तेरे नाम करा दूं घूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं जी भर के ना चले बेबी शैंपेन के शावर में यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

How dare you? How about that? जो मुझे छूने की कोशिश की? किस हाथ से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।